सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के युगल स्वर में ये गजल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं हजरत वासिफ अली वासिफ का ये कलाम, आवाज है आबिदा परवीन की।

0: वारसी बंधुओं की गाई इस कव्वाली के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और

0: पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल सिंधु का मुकाबला जापान की रिको कुंजी से होगा। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कल रंकी रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला ताइवान के ली झेहुई और यांग पोहान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है छाया पाठक ने।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमें प्रतिदिन आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो,
3: गाना सुना दीजिए।
2: जी, गाना तो सुनाएंगे आपको, अपना नाम तो बताइए।
3: हरदयाल जाटव, जिला सीपी, मध्य प्रदेश।
2: पूरा नाम फिर से बताएं।
3: हरदयाल जाटव।
2: हरदयाल जाटव,
3: हरदयाल जाटव।
2: कहाँ से हैं?
3: सीपरी से, जिला सीपरी।
2: जिला सीपरी से जी। अब बताएं कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: हमको सुना दीजिए अजनबी।
2: अजनबी फिल्म का?
3: हाँ, अजनबी का इंतजार, अजनबी से प्यार है।
2: सीपरी में आप क्या करते हैं?
3: इस टाइम तो गर्मी है, गर्मी के मारे अभी फ्री हैं। अभी
2: गर्मी के मारे सब फ्री हैं?
3: हाँ।
2: तो खेती किसानी करते हैं?
3: हाँ जी
2: जी। चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
3: नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: आपसे पहली बार बात हो रही है।
2: जी जी।

0: हेलो,
1: हेलो, फरमाइश, आकाशवाणी भोपाल।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: जी, हृदय से धन्यवाद
0: जी। नाम बताएं अपना।
1: जी। मैं आपका शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, आप कैसी हैं? मौसम कैसा आपके यहाँ?
0: बहुत अच्छा मौसम है, आप बताइए। बस मौसम तो इस समय बस सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, उफ, इतनी गर्मी है ना।
1: जी, निसंदेह यहाँ मथुरा में भी यही हाल है।
0: सब
1: जबरदस्त गर्मी
0: जी,
1: हो रही है,
0: सभी जगह
1: चमचमाती हुई
0: यही
1: धूप
0: हाल हो
1: रहती
0: रहे
1: है।
0: हैं।
1: जी,

0: गर्म गर्म हवाएं चलती
1: सब
0: हैं।
1: बेहाल है उससे।
0: जी, लू के प्रकोप में है इस वक्त मथुरा वृंदावन, पूरा ब्रज क्षेत्र।
1: जी, बताएं आज क्या फरमाइश आपकी है।
0: आरुणि दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बाबरची, भोर
1: बावर्ची फिल्म।
0: आई गया अंधियारा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत है।
1: तो इस समय तो दोपहर है।
0: जी, जब ये तो प्रसारित होता है तो भोर ही रहता है, 11 बजे तो हम भोर
1: तो
0: ही
1: आप
0: मानते हैं,
1: नहीं, तो
0: गुड
1: हमारा
0: मॉर्निंग
1: हमारा
0: बोलते
1: रेडियो
0: हैं,
1: का
0: सब जगह
1: प्रसारण
0: बोलते
1: तो
0: हैं।
1: सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाता है, आप देर से आरंभ करते होंगे,
0: जी,
1: है ना।
0: जी
1: हाँ, सुबह से सोना करिए, सुबह से ही कार्यक्रम हमारे, सुबह 6 बजे से हमारा रेडियो आरंभ होता है जो रात के 11 बजे तक लगातार चलता है।
0: जी निसंदेह आप
1: सुनिए।
0: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्र सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं। जी
1: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देनु चलैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom. कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: मध्य प्रदेश से देवीदास वड़ेले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: देवीदास जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हाँ जी मैडम जी, आज मुझे गाना सुनना है। जी फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।
0: जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कौन सा
1: गायकार है? नितिन मुकेश
0: जी।
1: और गीत के बोले जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोएगा वही पाएगा।
0: ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं, कर्मों का फल हमको यही मिल जाता है ना।
1: हाँ मैडम, जो करने की हो तो जो जैसी करने वैसी भरनी होती है मैडम जी।
0: हाँ ये बात सही है। आप अपने जीवन में लागू करते हैं?
1: बिल्कुल मैडम जी, मैं तो बिल्कुल अमल करता हूँ।
0: करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मैडम जी। और वही सोच होता सुनते उनको भी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो भी अपनी बात को अमल करे। कोई भी काम अपने से गलत ना हो,
0: गलत ना हो, किसी के लिए बुरा ना करे,
1: किसी का बुरा ना करे, ना बुरा होए,
0: ना बुरा होए के लिए तो ईश्वर देखिए अच्छा बुरा दोनों करता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तरफ से

0: किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए हम।
1: जी कहते ना मैडम जी, बुरा जो देखण में गया बुरा ना मुझसे होए।
0: जी
1: जो दिल खोजा अपना बुरा ना मुझसे होए।
0: बिल्कुल, मुझसे बुरा ना कोई।
1: जी
0: चलें, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। हेलो,
1: हाँ हेलो, मैं गर्ग बोल रहा हूँ कटनी से। जी
0: थोड़ी आवाज ऊंची रखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल।
1: मैं सुनील गर्ग बोल रहा हूँ
0: सुन,
1: कटनी से।
0: कटनी से,
1: जी अरे
0: कटनी के हालचाल सुनाए कुछ।
1: बस यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। हाँ
0: आपके यहाँ ही नहीं, सभी जगह गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। क्या
1: बहुत
0: उपाय
1: तेज
0: करते हैं आप
1: गर्मी।
0: गर्मी के लिए फिर?
1: क्या है, अपन तो घर ही में रहते हैं तो निकलती नहीं है,
0: बाहर
1: बस
0: नहीं
1: चार
0: निकलते
1: पांच
0: घर से।
1: बजे के बाद निकलते हैं शाम को, तो जाके अपनी दुकान खोल लेते हैं, राशन
0: काय की दुकान है आपकी?
1: की दुकान है।
0: राशन की दुकान है, तो दिन में बंद रखते हैं।
1: हाँ गर्मी की वजह से भी, और हमारे ग्राहक जो है वो केवल रात्रि में है, 5 से 8 बजे तक खोलते हैं।
0: तो सुबह भी आप नहीं खोलते दुकान?
1: नहीं, हम ऑफिसर को भी मालूम है हमारे कि ये दोपहर में नहीं खोलते।
0: चलिए अच्छी बात है। बताएं क्या गीत सुनेंगे आज,
1: आप अब्दुल्ला पिक्चर का सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं।
0: सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: जी।

0: हाँ जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
0: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: महाकाल के लोक से बोल रहे हैं आप?
0: जी, महाकालेश्वर जी की नगरी है उज्जैन, और महाकाल लोक कॉरिडोर भी बना हुआ है उज्जैन
1: तो अभी गर्मी में कुछ व्यवस्था वहां पर हुई है ना, ऐसा सुना है?
0: हाँ बिल्कुल मैडम जी, ये मंदिर के आसपास जो भी दर्शनार्थी आते हैं सभी उनके बैठने की व्यवस्था भी रहती है, और साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता जो रहते हैं उनमें जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की
1: ठंडे पानी
0: व्यवस्था
1: की
0: करते हैं।
1: व्यवस्था है?
0: जी बिल्कुल, और एक सामाजिक संस्था है जो जितने भी एक गाड़ी घूमती है उसमें सभी जगह जो यात्री रहते हैं उनके लिए पानी पिलाने की और बॉटल भरने की व्यवस्था भी, चलित वाहन है वो।
1: अच्छा, और
0: जी मैडम,
1: मतलब गर्मी से बचाव के लिए जो लाइन लगती है,
0: जमीन पर भी कॉलिन बिछा रहता
1: कालीन
0: है
1: बिछा
0: और टेंट लगा रहता है, और ऐसे तो सारा परिसर बिल्कुल जो आसपास का है वो जो बना हुआ है मतलब उसमें गर्मी नहीं लगती है, और पानी पीने की व्यवस्था साथ में कूलर भी लगे रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: और जितने भी जो कॉरिडोर के अंदर जो घूमते हैं ना बीच में रास्ता है जो जाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि घुमावदार रास्ता बना हुआ है, तो उसमें सब जगह पानी पीने की व्यवस्था भी रहती है।
1: चलिए बताएं आज क्या गीत आपको सुनवाएं।
0: गाना सुनना है मैडम मुझे, ये जब जब फूल खिले ये समा समा है ये प्यार का।
1: जी, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया,
0: जी मैडम जी, और
1: सुनिएगा
0: आज
1: आपकी
0: करीब एक
1: पसंद का
0: महीने के
1: गीत।
0: बाद में फोन लगाया है मैंने।
1: बहुत अच्छी बात है, आप जैसे जागरूक श्रोता ही तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देते हैं।
0: जी मैडम, हम तो सालों से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही मतलब आकाशवाणी भोपाल को सुनते आ रहे हैं, पहले रेडियो के माध्यम से सुनते थे, अब डिजिटल ऐप के माध्यम से सुनते हैं, और आपका प्रोग्राम तो डीटीएच पर भी जो फ्री टू एयर है ना उस पे साफ स्पष्ट क्वालिटी में सुनाई देता है मैडम।
1: इससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते रहिए, हम यही चाहते हैं। फोन
0: जी
1: करने
0: मैडम
1: के लिए
0: बिल्कुल, रहते
1: धन्यवाद।
0: हैं।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हाँ मैं राजेश अग्रवाल बोलता हूँ दीदी, देवास मध्य प्रदेश, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: छाया पाठक।
1: अच्छा छाया जी। हाँ तो मैं मनोरंजन फिल्मों का गीत है, आया हूँ मैं तेरे लिए तुझको ले जाऊंगा, ऐसा गीत है। मैं अपने किशोर दा और आशा भोसले की आवाज में, संजीव कुमार साहब की पिक्चर है ये जी, और आरडी बर्मन शायद म्यूजिककार है, इसके मतलब संगीतकार है
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको इतनी जानकारी है कि
1: जी।
0: गीतकार कौन है,
1: और
0: संगीतकार कौन है, गायक
1: जी
0: और किस
1: बिल्कुल,
0: पर
1: ये तो
0: फिल्माया
1: हम
0: गया है।
1: 40-45 वर्षों से सुनते आ रहे हैं ना।
0: जी चलिए, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार मैडम। फोन
1: नमस्कार
0: करेगी इसने?
1: जी। हाँ, फोन करें, गीत सुने।
0: हाँ मैडम, मैं जसराम जाटव बोल रहा हूँ, जोराई से। हाँ
1: जसराम जाटव, जौराई से। जौराई कहाँ पड़ता है?
0: जिला सीपी में। हाँ
1: जिला सीपरी में।
0: मैडम,
1: अच्छा, वहाँ पर आपका क्या कारोबार है?
0: बस कुछ नहीं मैडम, खेती किसानी करती हैं।
1: खेती किसानी। खेती किसानी से अभी फुर्सत है या कुछ वहाँ पर अभी बोया हुआ है या कुछ काम लगा है आपका?
0: नहीं मैडम, क्या है, अब तो गर्मी का टाइम है तो अब तो कुछ काम नहीं है। अपना काम जो जून से चालू हो जाएगा।
1: जून से चालू हो जाएगा। पानी की कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ?
0: पानी की व्यवस्था मैडम, हमारे यहाँ कुआ की व्यवस्था है, कुआ है।
1: कुआं है तो कुएं में अभी पानी पूरी गर्मी में रहता है?
0: नहीं मैडम, गर्मी में नहीं रहता है वो। क्या
1: अच्छा,
0: मैडम, गेहूं गेहूं की खेती करा देता है, गर्मी में नहीं रहता पानी उसमें।
1: तो आप लोगों ने सबका मिल करके कुआं है या आपका अकेला कुआं है? वो
0: तीन तीन भाई हैं। हाँ
1: 3 भाई हैं। अच्छा, तो आप उसके कुएं में पानी पर्याप्त रहे उसके लिए आपने कुछ प्रयास करते हैं आप लोग?
0: प्रयास तो मैडम अभी नहीं किया, प्रयास करेंगे। हाँ
1: करेंगे उसको और या तो गहरा खुदवाइए, उसके
0: हाँ मैडम,
1: आसपास
0: वो क्या है,
1: पेड़
0: गहरा
1: पौधे,
0: खुदवा
1: आसपास
0: लेंगे तो
1: पेड़
0: उसमें
1: पौधे
0: पानी रहेगा।
1: लगाइए।
0: अरे
1: जी
0: इसमें गहरा हो जाएगा तो पानी रहेगा ना इसमें।
1: हाँ, रहेगा। साथ में आसपास पेड़ पौधे लगाइए, है ना? ये
0: हाँ वो
1: व्यवस्था
0: तो
1: भी
0: खैर सही है मैडम।
1: जी, थोड़ा व्यवस्था करेंगे तो आप ही के लिए सुविधा रहेगी, आपके साथ साथ गांव वालों का भी भला होगा। कभी उनको ज़रूरत है तो उनके लिए भी आप पानी दे सकेंगे।
0: हाँ वो तो खैर सही है मैडम।
1: जी बताएं, क्या गीत सुनना चाहेंगे?
0: हमको मैडम सुनना है खयामत लम्का गाना सुनना है मैडम। खयामत
1: कौन सा?
0: लम्का सुनना है, लड़की बहुत याद आती है।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करे, गीत सुने।
1: जी साहब नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका क्या रेडियो चल रहा है?
1: जी हाँ।
0: रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए या आप उससे दूर हो जाइए। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कोदूलाल जायसवाल, पोस्ट मुकाम भैंसवाही, तहसील बिजराहलगढ़, जिला कटनी।
0: जी आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं,
0: हाँ
1: आप कौन मैडम बोल रही हैं सर?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं अभी इसी वक्त से,
0: इसी वक्त नहीं, कल।
1: कल धड़कन का दिल में ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
0: चलिए सुनिए अब आप गीत। नमस्कार।

0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नए श्रोताओं और नए साथी के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिन्दी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये पुस्तिका एक व्यवहारिक डिजिटल टूल किट के रूप में भी कार्य करती है। और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपने हमें चिट्ठियां भेजी हैं और आपके गाने हमने तैयार कर लिए हैं। पहला गीत हम ले रहे हैं दो बदन फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, शकील बदायूनी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा से दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है आप सभी की पसंद पर और जिसे हम सुनवा रहे हैं। आपने चिट्ठियां भेजी हैं गौतम नगर भोपाल से केएल पंजाबी, कमलेश पंजाबी, आशा राय जादा ने, अनिल श्वेता पंजाबी ने, उज्जैन से सुनील पंजाबी और शिल्पा पंजाबी ने, राजेश पंजाबी भोपाल से डॉक्टर किरण ग्रोवर, डॉक्टर नरेश ग्रोवर ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर के साथ अमित कुमार ने, आनंद बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है और राहुल देव बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया है।

इसका संगीत तैयार किया है। इस गीत को पसंद किया है ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा, अक्षरा अनुष्का शर्मा ने भोपाल से। इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पांचोलिया, प्रियंका पांचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पांचोलिया ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। मैं हूं आपके साथ साधना और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म में लता मंगेशकर को गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। आप सभी श्रोताओं ने हमें चिट्ठियां भेजी हैं। भोपाल सुभाष नगर से सुनील जैन, सुधीर, सारिका जैन, साहिल, अंकिता जैन, समीर, कृतिका जैन, सौम्या, शुभ्रा सम्यक और वेबी शार्बिल ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अपना वाहन अनजान व्यक्ति को न भेजें। किराएदार जांच परख कर रखें। अफवाहें न फैलाएं, न फैलने दें।
1: याद रखिए, अपनी चौकसी सबकी सुरक्षा।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। दिन के 12:30 होने को है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा सिसकियों का भाग एक।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो?
1: क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो, रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। अभी इसे ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है, और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बखूबी जानती है।
1: अरे अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आँख खुल जाएगी।
0: अजी कहाँ की बात कर रहे हो।
1: अब हमारे

0: अरे बहू तो सुबह ही उठ गई।
1: हाँ?
0: वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: अरे अरे वजी भाई ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी भी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
0: अजी मैंने कुछ नहीं कहा उसे, वो खुद उठी है। और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे। उसकी माँ वाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो, सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है। अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
0: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की। वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
1: अरे उस पाता के बारे में तो बस क्या कहूँ। अरे गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
0: हाँ।
1: बाप रे फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे वो तो मेरी बहन है इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना नाकों चने चबवा दे। अरे तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो, ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
0: लाहौल बिलाकुवत क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो। अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
1: हाँ जी चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ, सारे तो बच्ची है। अरे अपने मामा की बात का क्या बुरा थोड़ी मानेगी वो।
0: खैर छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
1: अरे जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है। अरे कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
0: हाँ जी।
1: अरे खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
0: हाँ चलो निकाह तो हो गया, अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे। निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
1: अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना तुम अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है, उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे देखना एक दिन तुम, बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
0: हाँ हाँ अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है, वरना वो भी आज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता।
1: उसका तुम नाम मत लो उसका मेरे सामने।
0: अरे क्या हो गया, अब तो उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
1: अरे नूरी से शादी करके कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब वो।
0: क्यों अब क्या हो गया, मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ।
1: हाँ।
0: क्या हुआ, खैरियत तो है ना। तुमने आकर कुछ

0: बताया ही नहीं था।
1: अरे क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक मदम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने मैके में, मैंने उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
0: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी, औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
1: देखो देखो देखो, ये अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ पता नहीं तुम्हें, अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है, अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
0: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है, मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
1: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है।
0: हाँ हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
1: ठीक है आओ, लो लो। अरे
0: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
1: अरे
0: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो। अभी तुम जाओ जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूँ।
1: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है, देखो आखिर जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है, अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है।
0: हाँ सारे, अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
1: देखो बेटी देख लो।
0: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई ये नहीं मानेगी, देखना अब तुम, ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
1: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको दे।

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय। अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ी मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है।
1: अजी, पहले एक घूंट पी तो लो। चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
0: अरे साराए, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
1: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है। और वैसे देख रही हूँ आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
0: सोच रहा हूँ कि आज जाऊं ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
1: शादी को

0: अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
1: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दें, सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
0: बस बस, आप छुट्टी का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे,
0: क्या हुआ?
1: आज तो बहुत देर हो गई सारा। अच्छा मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊं, जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
0: हाय अल्लाह, नहीं नहीं, उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
1: अच्छा ये सब बातें दोपहर को करेंगे। खुदा हाफिज।
0: हाफिज खुदा।

0: अरे क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूँ ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए, और एक दिन के लिए भी नहीं आई अपनी माँ से मिलने।
0: अरे अगर वो नहीं आई है तो तुम जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई का घर है।
1: हाय अल्लाह, तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा। जब देखो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
0: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना प्यार मिला है।
1: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
0: अरे मुझे पता नहीं क्या, फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
1: क्यों क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
0: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास 2-2 गायें हो गई हैं। मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
1: ऐश कर रही है? अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहाँ महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
0: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
1: शर्म कैसी जी, जो बात सही है वो सही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखा नहीं है गांव की और लड़कियां कैसे अपने शौहरों और सास ससुर को अपने कब्जे में किए रहती हैं? हमारी सारे तो इतनी सीधी है कि फंस गई होगी उनके चंगुल में।
0: अरे तू पगला गई है क्या? तेरे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती?

0: कि वो वहाँ खुश है।
1: या खुदा, अजी अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूँ। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुप भुन्नी औरत है, बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है। और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
0: आफ़ो, वहाँ पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
1: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो, जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
0: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो।
1: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
0: ओहो, देखो बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
1: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: अम्मा।
1: हाँ बहू। अम्मा मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी दरगाह शरीफ चलती तो अच्छा होता।
2: नहीं बहू, तुम लोग जाओ दरगाह पर और दीप जला कर आओ, जाओ।
1: लेकिन अम्मा आप घर का सारा काम करेंगी, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
2: तुम इसकी फिक्र मत करो बहू, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। जाओ, आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ, जाओ।
3: अब चलो भी साराय, बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहाँ से।
1: हाँ हाँ चलते हैं जी, इतनी जल्दी किस बात की है।
3: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी।
1: अच्छा बताओ तो जरा क्या बात है।
3: अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा।
1: ओफो मुश्ताक, आप बहुत खराब हैं।
3: अच्छा बाबा, अब चलो यहाँ से, चलो।
1: चलिए। मुश्ताक देखो कितना अच्छा लगता है ना, इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना। कितनी खूबसूरत दरगाह है, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ।
3: साराय।
1: हाँ।
3: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो।
1: हाँ मुश्ताक, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे अगर इसकी खूबसूरती का जरा भी अंदाजा होता ना तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज आती।
3: अच्छा चलो अब दरगाह में अंदर आओ, रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा।
1: हाँ, चलिए।
3: लो साराय, मैंने तुम्हारा दीप जला दिया, इसे वहां ले जाओ। अरे जाहिल औरत, इसने तो दीप बुझा दिया।
1: मुश्ताक ये तो अब शगुन है, ये ठीक नहीं हुआ।
3: अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं, फिर जल जाएगा।
1: नहीं मुश्ताक,

0: ये अच्छा नहीं होता। मेरी एक सहेली का दीप भी इसी तरह बुझ गया था। उस बेचारी का 1 महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक।
1: अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है। बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, आओ इधर आओ। वो देखो, तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं।
0: हाँ सही कहा आपने, वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप।
1: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते। ये देखो, ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई।
0: लाओ मुझे दो, मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा। मुश्ताक अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ।
1: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग अब निशात बाग जा रहे हैं।
0: क्या निशात बाग जा रहे हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ मुश्ताक, आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं आप।
1: बस बस बस, इतना मक्खन मत लगाओ। मुझे मालूम है कि तुम आज तक निशात बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन था। और इसीलिए मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ।
0: मुझे पता है, हम कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर?
1: बस समझो कि पहुंच ही गए।
0: हाँ?
1: वो देखो सामने बाग की रौनक नजर आई।
0: हाँ? क्या क्या यही निशात बाग है?
1: हाँ।
0: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
1: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लोगी क्या, किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना। अब देखो सारा नजारा कैसा लगा।
0: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक यहाँ लड़कियाँ देखो ना कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, कैसी गंदी लग रही हैं।
1: अरे सारे ये तो आजकल का फैशन है।
0: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
1: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
0: क्या?
1: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं, और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी ला कर दूंगा।
0: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
1: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा, अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
0: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
1: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख, क्या लड़की बैठी है। अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
2: अरे गुलाब लेने गया होगा। वैसे यार
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं आयुष मंत्रालय के

0: सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। महिला सभा कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम जानते हैं कि आप समय और पैसे की बचत में माहिर हैं और ऐसी ही सीख आप अपने नौनिहालों को भी दे रही हैं। जाहिर सी बात है, हमारे बुजुर्गों की यह सीख हमेशा उपयोगी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। खर्चे जब आय से अधिक हों और गैर जरूरी हों तो वो फिजूल खर्ची ही तो मानी जाती है ना। हमारी जरूरतों की और ख्वाहिशों की कहीं कोई सीमा नहीं होती, हमें उनकी सीमा तय करनी पड़ती है। अपनी आय के मुताबिक व्यय और बचत की आदत तो डालनी ही चाहिए। जरा विचार तो करें कि पैसा तो आया पर गया कहाँ। वेतन मिलते ही एक बजट बनाना जरूरी है सखियों। आपातकालीन बजट हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। सुविधाजनक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, ये बचत बढ़ाने में मदद कर सकता है। हर 15 दिन में खर्चों का हिसाब जरूर देखें। और हाँ, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे निवेश की आदत को भी अपनाएं। वित्तीय अनुशासन हमें आत्मविश्वासी बनाता है। अपने भविष्य, अपने सुखद सपनों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी बचत ही हमारे आड़े वक्त की सबसे बड़ी साथी है। जरूरत पर हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना। अब यही सोच रही हैं ना आप कि अब तो सुविधाओं के ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट के आदि हो गए हैं हम, क्या करें, ये आदत तो अब दूर ही नहीं होती। तो हमारा ये कहना है, अच्छी आदत की शुरुआत कभी भी शुरू की जा सकती है, आज से ही और अभी से ही। बजट बनाते समय 50-30-20 का फार्मूला अपनाएं। 50% जरूरी कामों में, 30% घूमने, शौक वगैरह में और 20% बचत के लिए सबसे पहले निकाल कर अलग रख दें। अब कुछ खर्चे तो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें सीमित रख सकते हैं। जैसे बिजली के खर्च को सीमित रखना तो हमारे हाथ में ही है। 5-स्टार रेटिंग के उपकरण ही इस्तेमाल करें, एसी का कम इस्तेमाल करें। ईएमआई की सुलभता तनाव को लाती है सखियों। विचार विमर्श के बाद ही ईएमआई पर कोई सामान लेने का निर्णय लें। अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें कि पिछले महीने कौन सा खर्च फिजूल ही हुआ, जिसके खर्चे से बचा जा सकता था। ऐसी बातों पर संकोच नहीं करें, अपनी नासमझी पर हंस भी सकते हैं आप। और अगले महीने की बैठकर परिवार के साथ प्लानिंग बनाएं। सच तो ये है सखियों कि हम अपनी मुस्कुराहट को जी भर कर खर्च करने में कतई संकोच न करें। इसे जी भर कर लुटाइए, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट जो है ना, वो खुशबू की तरह बिखर कर औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है।

0: और सखियों, हम जानते हैं कि गीत सुनने की तरह ही आपको कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा कथानक हो, एक सुखद अंत हो और दृश्य इस तरह से रचे गए हों कि ऐसा लगे हम तो इस कहानी के साथ ही चल रहे हैं, ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी लेकर आज हम आपके लिए आए हैं। वो सांवली लड़की, ये शीर्षक है इस कहानी का। कहानीकार हैं सुप्रतिष्ठित कहानीकार सुश्री नीरजा वर्मा।
1: रोज शाम को अपने कमरे की बालकनी में बैठे हुए आते जाते लोगों को देखना मेरा प्रिय शगल था। बुजुर्ग सजी धजी महिलाएं, हंसते खेलते हुए बच्चे, सभी तो गुजरते थे घर के सामने से। इन्हीं सब के बीच एक सांवली लड़की भी थी जिसे मैं रोज देखती थी। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक नजरें उसका पीछा करती थीं। एक दिन उसने नजरें ऊपर उठाई और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस दिन के बाद से कई बार हम लोगों की नजरें आपस में टकराती और इस प्रकार हम लोगों के बीच एक मौन रिश्ता बन गया था। किसी दिन उसे रास्ते से जाते हुए नहीं देखती तो दिन खाली खाली लगता। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर रोज उसका इंतजार जरूर रहता था। कई दिनों से अब उसके साथ उसी की उम्र का एक नौजवान भी कभी कभी उसके साथ दिखने लगा था, शायद उसका दोस्त था। उन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगता था। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जाते दिखते थे। उन दोनों को देखकर

मुझे अतीत की यादें सताने लगती थीं। मुझे भी अपने वे दिन याद आ जाते थे जब मैं अजय के साथ होती थी। आज याद आ रहा था वो दिन जब मैं अजय के साथ एक प्रदर्शनी देखकर वापस आ रही थी और रास्ते में एक बारात देखकर अजय बोल पड़ा था, भाई हम तो शादी करेंगे तो बड़ी सादगी से, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ अपने कुछ लोग और तुम्हारे जैसी कोई लड़की जो अपनी सादगी से सबका मन मोह ले। उस समय अजय की आंखों में अपने लिए चाहत देखकर मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि जिंदगी का सफर साथ तय करना चाहते थे, पर हम दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अपने घर वालों को समझा पाते या उनके विरोध की परवाह न करते हुए कोई कदम उठा पाते। और फिर वही हुआ जैसा कि आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है, मेरी शादी तय कर दी गई और फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि पीछे मुड़कर देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज भी एक कसक है मन में अपना मनचाहा जीवन साथी ना पाने की। कुछ दिनों से लड़की फिर अकेली दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा हो रही थी कि क्या हुआ, उसका साथी दोस्त वो लड़का कहाँ गया, अब वो इसके साथ क्यों नहीं दिखता। कई सारे सवाल दिमाग में घूमने लगे थे, पर पूछूं तो कैसे, आज तक तो उससे कभी बात की नहीं थी। फिर सोचती मुझे क्या करना, क्यों मैं उसके विषय में इतना सोचती हूँ, क्यों उसके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मन था कि मानता ही नहीं था, शायद उसमें मैं अपना अतीत देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, जब वो शाम को दिखाई दी तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो वो लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर मेरी बालकनी के नीचे आकर खड़ी हो गई। मैंने बालकनी से ही उससे जीने की ओर इशारा करते हुए ऊपर आने को कहा। जैसे ही वो ऊपर आई मैंने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटी, अगर ऐतराज ना हो तो कुछ देर मेरे पास बैठोगी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मेरा स्नेह देखकर वो सकुचाते हुए बैठ गई। शायद उसे लग रहा था आ तो गई हूँ पर अनजान घर में अनजान महिला से क्या बात करूं। मैंने उसकी स्थिति को समझते हुए उससे प्रश्न किया, बेटी कहाँ रहती हो, रोज तुम्हें जाते हुए देखती हूँ, कई बार सोचा कि तुम्हें बुलाकर बात करूं, फिर लगा पता नहीं तुम क्या सोचो, पर आज रहा नहीं गया इसीलिए तुम्हें बुला ही लिया। आंटी मेरा नाम आरती है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहती हूँ, मेरे ऑफिस से वापस लौटने का समय होता है ये, मैं भी रोज आपको देखती हूँ, कई बार जब आप बालकनी में नहीं होती तो सोचती थी कि काम में व्यस्त होंगी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आरती ये कहते हुए थोड़ी सहज हो गई थी और थोड़ी देर बाद तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बातों में ही पता लगा था कि वो नौजवान उसके ऑफिस में ही काम करता है और चूंकि उसके घर के ही पास रहता है इसलिए वे लोग कभी कभी साथ ही ऑफिस से घर लौटते हैं। धीरे धीरे आरती मेरे साथ काफी घुल मिल गई थी, अब वो कई बार मेरे पास आ जाती थी, अगर किसी कारण से नहीं आ पाती तो रास्ते से ही हाथ हिलाकर हमारे बीच मुस्कुराहटों का आदान प्रदान जरूर हो जाया करता था। हम लोगों के बीच का रिश्ता कब इतना गहरा हो गया पता ही नहीं चला। आरती अब तक मुझे बता चुकी थी कि वो नौजवान यानी आकाश और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और फिर वही लोगों की कानाफूसी, माता पिता की हिदायतें और अब उनके साथ साथ आने पर पाबंदी लग चुकी थी। उस दिन तो ये सब बताते बताते आरती रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया, देखो तुम एक कामकाजी लड़की हो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा, अमूमन हर मध्यम वर्गीय घर में यही होता है, पर अगर इस समय तुमने सही फैसला नहीं लिया तो जिंदगी भर इस बात पर पछताओगी। मैंने भी सोच लिया था कि जो गलती मैंने और अजय ने की थी उन दोनों को नहीं करने दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी इन्हें एक करने की। कुछ दिनों से आरती दिखाई नहीं दी थी, मुझे चिंता हो रही थी और अपनी बेवकूफी पर खीज भी आ रही थी। मैंने उससे उसका फोन नंबर तो लिया ही नहीं था और ना ही अपना नंबर उसको दिया था, कैसे पता चलेगा क्या हुआ है, कहीं बीमार तो नहीं है या कहीं बाहर चली गई है। इसी सब में आज करीब एक महीना हो चला था। अचानक एक दिन मैंने आकाश को अकेले जाते हुए देखा। इच्छा हुई कि उसे बुलाकर आरती के बारे में पूछूं, पर यह सोचकर रह गई कि पता नहीं क्या सोचेगा। इसके बाद भी कई दिन तक आरती दिखाई नहीं दी, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। एक दिन फिर मैंने आकाश को देखा, उसको देखते ही मैंने अपने किराएदार के छोटे से बेटे को जो मेरे पास ही खेल रहा था आकाश को दिखाकर कहा, जा बेटा उस लड़के को बुलाकर ला, कहना मेरी आंटी बुला रही है। थोड़ी देर में आकाश मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा,
बैठो बेटा, उसकी प्रश्नवाचक निगाहें मुझसे कई सवाल पूछ रही थीं।

0: मैंने उसे ज्यादा इंतजार ना कराते हुए कहना शुरू किया, बेटा आकाश तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। दरअसल तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं आरती के जरिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत दिनों से आरती दिखाई नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। क्या वो बीमार है? पहले तुम दोनों को साथ साथ आते देखती थी। क्या बात है, क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? इतने सारे सवाल सुनकर और अपने नाम से किए गए संबोधन से आकाश हैरान था। आंटी आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और आरती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, बेटा आरती और मेरा जो रिश्ता है वो शायद तुम नहीं समझोगे, पर बहुत दिनों से आरती को ना देखकर मैं चिंतित हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में है, और तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमसे बात करना उचित समझा। आरती यहीं से आती जाती है, करीब करीब रोज ही मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने कभी अपने फोन नंबर आदान प्रदान करने की जरूरत नहीं समझी, इसीलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। आज तुम देखे तो लगा तुम तो सब कुछ जानते ही होगे। मेरी बातें सुनकर आकाश के चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, और मेरी बातों से उसे मेरे और आरती के संबंध का अंदाजा भी हो रहा था। धीरे से बोला, आंटी आरती से तो मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। अब मैंने संजीदगी से आकाश से कहा, बेटा जिंदगी में कई बार फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि उसका परिणाम हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, और समय पर सही फैसला ना लेने की गलती का एहसास हमें सारी जिंदगी सालता रहता है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या परेशानी है, पर अपने तजुर्बे से बस इतना जरूर कहूंगी कि अगर वाकई तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और रिश्ते में गंभीर हो, तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही होगी, वरना सारी जिंदगी इस दर्द, इस कसक को सहने को तैयार रहो। आकाश आश्चर्यचकित नजरों से मेरी ओर देख रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ मालूम है। बोला, आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। सच बात तो यह है कि आरती के घर वाले उसका संबंध कहीं और करना चाहते हैं, पर आरती उसका विरोध कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है वो, और मैं बस इतना कहकर आकाश चला गया। उसके जाने के अंदाज से लग रहा था कि वो निर्णय ले चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने आरती और आकाश को साथ देखा। वे दोनों मेरी ओर ही आ रहे थे। पास आकर दोनों ने मेरे पैर छुए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों एक हो चुके हैं। उनकी कृतज्ञता भरी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। शब्दों की जरूरत ही कहाँ थी। मेरी आंखें भी छलछला आई थीं। दोनों को इस तरह एक साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी

कुर्बानी ईद भी कहते हैं। इस्लाम धर्म का ये एक प्रमुख त्योहार है। ये रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर के जिला हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। सखियों, बकरीद पर्व का सामाजिक संदेश भी बहुत व्यापक है, अच्छा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं का त्याग करके ही हम इंसानियत की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अमीर गरीब सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियाँ मना सकें। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कई गैर मुस्लिम दोस्त भी अपने मुस्लिम साथियों के घर सेवैयां और बिरयानी खाने जाते हैं। बकरीद सिर्फ जंतु की कुर्बानी का नाम नहीं है सखियों, असल कुर्बानी है अपने लालच, घमंड, झूठ और बुराई की कुर्बानी देना। त्याग, मोहब्बत और भाईचारे का यही पैगाम बकरीद को खास बनाता है।

0: सखियों, गर्मियों के तपते मौसम में हमें अपनी हरी भरी बगिया सबसे अधिक सुकून देती है। अब ये प्यारी सी बगिया आपकी बालकनी, गैलरी, छत, बरामदा कहीं भी सजी हो सकती है। आप क्रोटन्स पसंद करते हैं या रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बगिया के पौधे बस आपका दुलार चाहते हैं और बदले में अपनी ताजगी, खुशबू और प्यार बिखेरते हैं। गर्मी आते ही धूप की तेजी से पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से लू के मौसम में भी ठंडी और हरी दिख सकती है ये बगिया। सखियों, गर्मियों में पौधों को पानी देने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक का सही माना जाता है। और हाँ, पानी जड़ में ही दें, सुबह के समय पत्तों पर नहीं, क्योंकि पत्तों पर पानी धूप में लेंस का काम करता है, जिससे कि किरणें पत्तियों को झुलसा भी सकती हैं। पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके, लकड़ी का बुरादा या घास बिछा दें। पेड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगाएं। छोटे पौधों को बड़े पौधों की छांव में रखें। गर्मी में सदाबहार, गेंदा, बोगनवेलिया, कनेर, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधों को लगाना चाहिए। ये लू की गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। सखियों, पौधे भी इंसानों जैसे होते हैं, उन्हें भी गर्मी और सर्दी का एहसास होता है, इन्हें भी लू लगती है, प्यास लगती है। अगर पत्ते मुरझाते हुए, कुम्हलाते हुए दिखें, तो समझ जाएं कि इन्हें पानी का अमृत और छांव की दरकार है। पंछियों के लिए सकोरे में दाना और पानी रखना भी जरूरी है। इनका घर तो हमारी ये बगिया ही है ना। हमारी बगिया हमसे बहुत अधिक कुछ भी नहीं चाहती, थोड़ी सी देखभाल, प्यार और तेज धूप से बचाओ। घर की सबसे प्यारी जीवंत जगह आपको बार बार अपने पहलू में बुलाएगी। अब महिला सभा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपनी सखी सुनीता पाठक को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है विजय लता पराशर, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। इनके गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ में ये दादरा

0: करें यहाँ पे ई संपदा और इसको सर्च करेंगे। ये ई संपदा की साइट है देखो, जिसमें लिखा हुआ है ई संपदा डॉट महुआ डॉट जीओवी डॉट इन।
1: आज आप सुन रहे थे विजय लता पाराशर के
0: गाए। आपको ओपन करते इस तरह का आपको व्यू दिखेगा। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लॉगिन पर क्लिक करना है और रजिस्टर हियर यहाँ क्लिक करना है।
2: एक जमाने

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानी हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जैसे ही ओटीपी फिल करेंगे ये आपकी वेरीफाइड हो जाएगी मेल। इसके बाद में आपको फोन नंबर को वेरीफाइड करवाना रहेगा।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: यहाँ तक आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको लॉगिन करना है और प्रोफाइल को अपडेट करना है, यही आपका मेन काम रहेगा।
3: संगीत के कार्यक्रम
2: दोस्तों प्रोफाइल को वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, तीन चीजों का पीडीएफ जरूर होना चाहिए क्योंकि इसके बगैर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, इनको आपको अपलोड करना रहेगा। तो पहली जो चीज है वो रहेगी आपकी करंट महीने की पे स्लिप, और दूसरी पीडीएफ रहेगी आपका ज्वाइनिंग लेटर, एंड थर्ड पीडीएफ रहेगी आपका यदि प्रमोशन हुआ है तो आपका प्रमोशन लेटर। और पीडीएफ की जो साइज है वो 400 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इससे बड़ी फाइल होगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इन तीन पीडीएफ के साथ में आपके एक 50 केबी का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ फिल करनी है और ये जो गंदा सा कैप्चा दिया है इसको डालना है और आपको लॉगिन कर लेना है।

मास्टर है, असिस्टेंट लोको पायलट है, इस तरह आपको अपना डेजिग्नेशन यहाँ लिखना है। यहाँ देखो करंट सिटी रहेगी जहाँ पे आप अभी वर्क कर रहे हैं। इसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऑफिस एड्रेस डालना पड़ेगा। इसके लिए देखो ये साइड में जो तीन डॉट दिए गए हैं इस पे क्लिक करना है। अब आपको मिनिस्ट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे आप रेलवे में हो तो यहाँ रेलवे लिखोगे तो सबसे ऊपर ये जो रेलवे मिनिस्ट्री इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आपको डिपार्टमेंट दिखाना होगा। डिपार्टमेंट में जैसे आप यहाँ देखो वेस्टर्न रेलवे लिखा आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर देखो ऑर्गेनाइजेशन में भी वेस्टर्न रेलवे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑफिस में ध्यान रखना, यदि आपका प्रॉपर ऑफिस नहीं

प्रेजेंट बेसिक सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये देखो एक पॉपअप शो होगा। यहाँ आपको तीनों पीडीएफ को अपलोड करना है। पहले में यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन लेटर अपलोड करना है, और यदि प्रमोशन नहीं हुआ है तो आप

बुक करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये देखो हॉलीडे होम एंड गेस्ट हाउस बुकिंग का यहाँ देखो दिखाने लग गया है। यहाँ क्लिक करके आप ऑल ओवर इंडिया में 2 महीने पहले से ही आप रूम बुक करवा सकते हैं। रूम कैसे बुक करना है इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक

0: इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर

0: देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत दिल धड़कने दो। इस फिल्म का ये गीत है। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है, शंकर हसन लॉय ने धुन बनाई है।

0: आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में थोड़ी ही देर में लेते हैं एक अंतराल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनते हैं अग्निपथ फिल्म से ये गीत अजय की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है अजय अतुल ने।

और अब सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। ये गीत आतिफ असलम ने गाया है, अरशाद कामिल के बोल है और इसे संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

अब अंत में सुनिए जिसमें तू से ये गीत गाया है के और श्रेया घोषाल ने, जिसे लिखा है आर्को प्रावो मुखर्जी और मुनीश माखीजा ने, और संगीत भी है आर्को प्रावो मुखर्जी का।

और इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान लागू इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने भाग लिया। और आईपीएल में आज शाम 7:30 मोहाली में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
0: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
0: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है
2: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे टुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
0: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
0: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि

0: ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
1: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
1: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
1: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
1: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
0: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।

0: प्रिय मित्र, अब कुछ है हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं, तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं, तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ, तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए, हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। सबर करें ना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय

उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालनपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है, फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को

0: जहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को

ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक

0: 19 June 1999 स्थान 0.5140 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो! दुर्गा माता की!
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
5: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
5: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो।

0: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
1: जी सर।
2: हमला करो दुर्गा माता की
3: जय।
2: माता की
3: जय।
4: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
0: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं
0: लेकिन साहब जी, मैंने कहा ना पीछे हट जा।
5: मैं जा रहा हूं।
0: साहब जी, साहब जी।
4: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे, दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
0: क्या हुआ तुम्हें?

उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत में पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। हेड स्टोरी 3 से ये गीत सुनिए। अरमान मलिक, नीति मोहन की आवाज है, रश्मि विराग ने लिखे हैं बोल, और संगीत भी है अमाल मलिक का।

और अब अगली आवाज सुनिए अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की फिल्म तमाशा से। ये गीत लिखा है इरशाद कामल ने और संगीत है ए आर रहमान का।

अगली आवाज सुनिए अरिजीत सिंह की खामोशियां फिल्म से सईद कादरी का लिखा हुआ गीत है और इसे संगीत से सजाया है जीत गांगुली ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए कनिका कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है एक पहेली लीला। इसके बोल लिखे हैं कुमार ने और इसमें संगीत दिया है डॉक्टर ज्यूस ने।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस

0: जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा।

शाम 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। शाम 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुन सकते हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे नाटक उपेक्षित प्रस्तुत होगा, जिसके प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन और लेखक घनश्याम सिंह तोमर हैं। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट के गिटार वादन का राग होगा रागेश्री। अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 28 मई दिन गुरुवार की सभा में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और कल सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर नाटक डाकू बनते बनते प्रस्तुत होगा, जिसकी लेखिका हैं आशा शुक्ला और प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी हैं। कल सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी और सुबह 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये थे कल सुबह 11 बजे तक आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। कल सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12 बजे 2:30 और रात 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, जिसमें हम पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सिसकियां की दूसरी कड़ी प्रस्तुत होगी। कल दोपहर 1 बजे महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान रहेंगे। कल शाम 5:33, 6:30, 8:15 और रात 9:30 पर फिल्म संगीत प्रस्तुत होगा। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। पंडित समरेश चौधरी के ख्याल गायन का राग होगा गोरख कल्याण। इसी के साथ कल और आज की सभा के कार्यक्रमों का विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस टुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सीबीएसई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सीबीएसई की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
3: आज खजुराहो और

0: छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं बल्कि योग अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
1: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के दो कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रुपए से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41,00,000 रुपए के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जाँच करने और होने पर कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में IHSDP योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभा कक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और IPL में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: चौपाल कार्यक्रम के समय हमारे सुनैया हितुवन का ही भाई करण का ही सबा जन का लखन भाई के राम राम सुनैया उत्साहित मलिमास और नौतपा मानी लुआर जिखा डॉक्टर हीट स्ट्रोक कहा था वो लगातार कई अपने कुछ दिन से पर प्रकोप अपने इकाई महसूस कर रहे हैं।
1: आठवें दिन की पहली किरण
0: आज क्वालिता मोबाइल में घाल मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से या में से अलर्ट सजग करेगा लोगों का जारी की जात है कि भाई या क्षेत्र में ही लुआर के प्रकोप बढ़ सकते हैं, तो सतर्क रही, सावधान रही, जरूरत हो तब घर से निकली और नहीं तो घर के भीतर अपन जो जेखा जहाँ कहू के कार्यालय है कहू के जहाँ अपन माने छाया हो वहाँ अपन काम धाम करा, शरीर के तापमान का ही सामान बनाए रखा, ऐसा जन वही मिले थी।
2: हेलो,
0: वैसे कि कबो कबो छोट छोट गलती बड़ी बड़ी हुतबिता हो जाती है, मनाई तो लागत है कि अरे हमका कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन सबके शरीर तो एक है,
2: मानी उतक
0: कोशिका और अंगन से तमाम जो पोषक तत्व से खून कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बना होता है और पानी के ऊपर नीचे भय से बड़े बड़े बधवा फूट जाते, हवा के ऊपर भय से बड़े बड़े बड़ेवर जो है वो पता नहीं काका उड़ा लेती है, तो ये गर्म हवा हमारे शरीर के जो तापक्रम है हमारे शरीर के जो नस है उनका बड़ा प्रभावित करती है, यानी थी शरीर के अंदर हर जो क्रिया होती है उनके खातिर एक निश्चित ताप शरीर के अंदर है, नहीं हर बाहर आओ जितने भर जीव जंतु है, चाहे वह गोहूं धान के चाहे उत्पादन हो चाहे बीज आओ फल आओ, ये सब कहां न कहां प्रकृति के ताप से माने संकेत से उनका फल पूर्व होता है, ऐसे अपने शरीरों में ही जितने भर माने अंग है तो उनका एक निश्चित ताप होता है, ऊपर नीचे भा तहले फिर सब गड़बड़ाई जात है, तो कब ये ताव बने चले कि हो या हमका तो कुछ हो ही ना हमको कुछ होता है, हाँ कब होता है कि सब भगवान मने भगवान कब ऐसा न करे कुहू के ऊपर, लेकिन परिस्थिति बिगड़ जाती ऐसे हमका पाचन का जो मेरे से अलर्ट आवत है उनका पालन करना चाहिए। सुनैया
3: चलो
0: हीट स्ट्रोक के प्रकोप अपना बाजी सतर्कता सावधानी रखी, बहुत जरूरत हो तब बाहर निकली, शरीर का तापमान का जैसे बताओ बहन के सामान में रखी और ये शरीर में ही मैंने कही कि हीट स्ट्रोक से ही मस्तिष्क की जो क्षति हो सकती थी, अंगन मता मैंने फेल हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु घलाए कहाँ कहाँ हम बची देखी थी, कुछ कुछ घटना माँ हमका पाचन का सुने का मिलती है। गुरुवन का देखी है बच्चे तो देखी समय मैंने देखा देखा तो उछाते पलटिया था गाँव में, तो यह कह देते कि होगा गर्मी आ या माने गुरुवन में मांसपेशी उनका तंतापन है कि बैलेंस कर लेते दही मास लग गया पता नहीं का अपन अपन रीत काल परंपरा के हिसाब से लोग अपने गुरुवन के मवेशियों के अंदाज जाना था, यही मेरे हीट स्ट्रोक से मैंने गंभीर निर्जलीकरण के नुकसान होते हैं, शरीर के अंदर पानी और सोडियम पोटेशियम के मात्रा बिगड़ जाती, पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं, उल्टी हो लगा थी, दस्त चले लागत है, बहुत तेज से मैंने मुड़ पिराए लागत है, बोले में आवाज लड़खड़ाए लागत थी, भ्रम की स्थिति होती, बेहोशी के साथ है मैंने तापमान के ऊपर भय से ऐसे मताबा थे कि 40 डिग्री से अगर ऊपर भय तो किडनी लीवर और दिल का बहुत नुकसान है। सुनैया ये सब गंभीर लक्षण आई दिखाए थे नजदीकी अस्पताल में।

0: ले जाइए,
1: बाल कटवा
0: भर्ती करिए और मेर मेर के जो उनका उपचार हुआ कर करिए।
1: स्लैम बाल का
0: देखिए शरीर में ही बहुत मेर के अपन ऐसा नहीं आए कि एक बचाव बहुत मेर के हैं उनका। जब हम पंची करी तब बचाव खान पान में सबसे बड़ी मनी भूमिका उकर निभात है। खान पान माही माने माठा होएगा और नींबू शरबत होएगा ऐसन ऐसन गांव माही जो ठंड वाली चीज है उनका खान पान होत है ता शरीर अपने आप का ही संतुलित करत है अपने आप का ही सही करत। देखिए ऐसन मान ले डॉक्टर बतावा थे कि लू अगर लग गया है हीट स्ट्रोक शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती एक दूर करे के खातिर बहुत ठंड वाला बर्फ वाला नहीं पर ठंड तरल पदार्थन के सेवन करा चाहिए। ओआरएस के घोल शरीर में नमक और पानी के संतुलन तुरंत वापस लिया में के खातिर ओआरएस सबसे असरदार होते है। एक गिलास में अपना आधा नींबू और ऐसे एक चुटकी भर नमक होगी एक चम्मच चीनी मिलाई के एक पिए से ओआरएस की घोल बना सकते हैं। लड़कियों का बहुत मजबूती प्रदान करती है पेट की मजबूती पराय लागत थी तो शरीर में ही कहां कहां कमी होती तो या उसका भरपाई कर साथ है नारियल पानी हो गया। नारियल पानी मान ली जहाँ उपलब्ध है हुआ तो ठीक है पर बहुत जगह नारियल पानी उपलब्ध नहीं हो पर नारियल पानी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पोटेशियम शरीर का ही ठंड बनाए रखा थे। साथ है अपने घर में जब सबसे ज्यादा हो थे माठा हो गया दही हो गया मैं काला नमक का भुना जीरा का मिला के पिए पाचन सही रहता है और कमजोरी दूर होती। ऐसे कच्चे आम के पना काहे पना गर्मी में होते है पना का लोग काहे माना थे वह यहीं से माना थे कि कच्चे आम का ही उबाल के वह जीरा और सेंधा नमक मिला के पिए से लुआर से बड़ी राहत मिला थी। और साथ है बेल के शरबत एक चूंकि कहा होते कि तासीर बहुत ठंड होती जब शरीर के तापमान का नियंत्रित करे में ही मदद कर रही थी तो बुखार आवे चक्कर आवे इमें ऐसे कोनो माने ऐसा अंदाज मिले कि तेज मूड पिलाए रहा है जी मिचलाए रहा है या कि बेर बेर माने बाहर जायक पर रहा है तो इमें से बे बे पिसाब लग रही है तो इस सब लेकर लक्षण आई कि कहो ना कुछ न कुछ अंदर समस्या जनाए रही है। और देखिए इतना तो मैंने बताया इसकी या अंदर की समस्या लेकिन अपन जो त्वचा है ये होगते एक निश्चित तापक्रम होता है त्वचा बहुत प्रभावित होती अगर नमी बनी रहा थी तो खाज खुजली और तमाम मेर के समस्या होती है एक परत जो उनकर होती रूखापन आ जाते तो वहाँ उनका संयम बनावे के बहुत जरूरत होबा करा थी। और साथ है सुनियो हीट स्ट्रोक के मैंने अब बहुत दिन तो नहीं रहता है कुछ दिन रहा था तो इतना मैंने अगर बरकाए लेते हैं तो या बहुत अपने के नेता बहुत ठीक होते हैं। साथ है एक
1: मुझे नहीं पता
0: हमारे पाचन के ही समाज में ही हर वर्ग के लोग हर धर्म परंपरा का मानने वाले रहा था और यही भारत के विविधता मैंने माना था। और विविधता यानी जहाँ मेर मेर के धर्म संसद मेर मेर के पूजा पद्धति मेर मेर के रहन सहन मेर मेर के खाप पियप मेर मेर के रहने वाले जहाँ लोग होते वहाँ विविधता होती। एक ही मान ली अगर कमनो फूल के बगान है बगिया है वहाँ एक मेरे अगर फूल लगे हैं तो नहीं निकल आ गए विविध रंगन के जब फूल के दर्शन होते हैं तो आँखें का बड़ी शांति मिला थी और वह जो माटी है वो ज्यादा प्रगति कर रही थी ऐसा वैज्ञानिक ऐसी वैज्ञानिक कहावत है। तो अपने का कहावत है जो मुसलमान भाई है
2: और एक आप लोग
0: उनके
2: जो देश की खातिर अपनी जान दे दे
0: वो मनामे जाए वाला जो उनके अपन संकल्प है
2: वो कैसे आना हुआ
0: बकरी जगह ईद उल अजहा कहा थे ऐसा कहा थे कि पैगंबर हजरत इब्राहिम के द्वारा अल्लाह का हुक्म ही अपन जो उनका लड़का रहे हजरत इस्माइल की कुर्बानी दे के संकल्प की याद मनाई जाती यह त्योहार त्याग अटूट विश्वास और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण के प्रति माना जाता है। ऐसा मुताबा थे कि त्याग के परीक्षा जिमा वो थी जिमा हजरत इस्माइल के कुर्बानी दीन गए और तमाम मेर के अपन या उत्सव के मनाने के अपन ये कुर्बानी के मनाने की अपन परंपरा है तो
1: या
0: सब बच्चे समाज में ही जब उनकी भर अपन उत्सव होती है कहाँ न कहाँ सामाजिक जीवन में एक महत्व है और महत्व से साथ है एक कहाँ न कहाँ एक संदेश
1: शेखर डिप्रेस हो गया रिया को लेकर आओ शेखर मेरी बेटी का है रिया का है
3: पुलिस
1: पुलिस

0: सर ये तो आर्मी वाला है
1: क्या?
0: हाँ सर।
2: पहले क्यों नहीं बताया बे?
3: चल चली
2: खामगाम ने तुझे इतना टॉर्चर किया।
0: जो ये तेरा टॉर्चर है
3: अब हम बच्चे ये किसानी के लिए
0: वो मेरा मामा
1: ये तेरी सरहद नहीं है मेरा एरिया है यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने समझा
0: सुशील उठो डीआईजी साहब आए जल्दी उठो रात को 2:30 बजे
4: मेरे प्यारे देशवासियों 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम इस एक शब्द में कितने ही भाव है कितनी ऊर्जाएं हैं।
0: तो तुम हो
4: सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्व का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बने। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम 150 के साथ जरूर भेजिए #वंदेमातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
5: सुनो ना
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे
5: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
7: नहीं समझा जब जंग दिल और दिमाग की हो ना मियाँ तो हमेशा दिल की सुनो क्योंकि दिमाग क्या होता
8: भाई करो
7: सही
8: खेती पाती है पचकरी
7: थी क्या होता
8: और खेती पाती
9: के
8: सबसे ज्यादा जन नहीं है निश्चित रूप से अपना पाचन का ही रहा थी। हर खेती पाती के जो नई फसल है उकर तैयारी और जो पुरान फसल है उकर कटाई उकर सफाई के काम
0: में हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
8: अब जून महीना लगाए वाला है जून महीने से
7: बरसात
8: के आगमन तैयारी होने लगती है। तो सबसे पहले तो यह है कि बिना बरसात के पहले अपन घर गांव के जो नाली नर्दा होगा साफ कर दी इससे के बराबर पानी निकले। पानी अगर ना निकाली तो भीतरे उसी तरह में आफत परेशानी होती
0: है।
8: बाहर के जो जीव जंतु
9: भरे हुए कीड़ा
8: पार्टिसिपेट लोग प्रभावित होते
3: साथ है घर के चारों तरफ से सफाई की राखी जैसे।
9: लेकिन ये बच्चे हमारे स्कूल में है ही नहीं, तो कैसे किडनैपिंग हुआ
3: यहाँ पे? संभावना ना हो, बल्कि पानी ऐसा जगह रोके के व्यवस्था जरूर बनाई हुई कि उन्हें पानी वो भूमिगत ज्यादा से ज्यादा आसपास हो, उसे अपन जल स्तर है अपने घर के आसपास वह बढ़ी, जल स्तर बढ़ी, गर्मी में ही फाफट न कूदी पड़ी, परेशानी न हुई कि जल स्तर नीचे चला जाया था, तब तक लगे मोटर फिर धुखो धुखो उठ है, पानी अगर बंद हो गया तब जबकि घंटा दो घंटा चला फिर पानी चुक गया, तो या अगर अपने आसपास पानी संरक्षित है तो यह बड़ी बात होती। बहुत तकनीकी ऐसा हाई ऐसा बतावा थे कि वाटर हार्वेस्टिंग यानी वहाँ जहाँ अपन मोटर है वहीं से कई कनेक्शन बनाए जाते हैं, अपन तकनीकी की जानकारी लेके कह सकी थे या कि ऐसा गढ़ा बना लेते है ना, तो वहाँ तमाम इस बार पथरा दिखाई देते मैं तो वहाँ पानी
10: सोखता
3: जगह
10: नहीं
3: बना सकी थे।
10: रिया के नाम से कोई लड़की है ही नहीं,
9: वो तो कहेंगे ना
3: साथ है
9: नाम क्लियर रखना चाहते
3: हैं, जो नाली घरे से मेरे निकली है तो वो नाली साफ रहा चाहिए, आजकल होता है पन्नी में भूजल प्लास्टिक ये सब बुजर जाते है,
9: बुजर जाते
3: भरी रहती भरी रहती बरसात में बरसा पानी तो पानी कहाँ जाए, घर ही घुसा था फिर वो नहीं के बड़ी परेशानी होती, या कि नगर निगम नगर निगम स्तर है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, तो बस ये कोशिश थी कि अरे फलाने काम नहीं करी, दुकाने नहीं करी, अरे हमारे घर के हैं तो हम
9: पंचायत कह थे कि
3: जो नन्नी पन्नी है खचड़ा है वो नहीं बाहर निकाल, पानी की जो परिवहन है रफ्तार है वो आगे के चले लगे, बहुत कहा है कहाँ कहाँ एक थे ये कमजोरी रही सरकारी नाली आए सरकारी रोड आए तो जब यहाँ परा है तो परा है, सरकारी रोडिया तो वहाँ ही चला उठा बैठक हुई जेकर गाँव आ जेकर घर आ जेकर
10: फोटो नहीं है
3: मैंने समय हुई वो सबसे ज्यादा लाभ तो वहाँ ली को उके घर आई है तो वह रूट तो ऐसे कि अपने हम जब अपन अपन ताक ले ही था संगा गांव तक कर जाए संगा गांव सब मैं साफ हो जाए निकाह हो जाए तो पानी का मैंने उतारे का व्यवस्थित जो संरचना है उस संरचना का बनाए रखे तो उन्हें ठीक है हले हम पानी के बात कर लगन था इतनी जुना आज हम बचे बुधवार के रोज कृषि इस सप्ताह की कृषि सलाह विषय वही कुछ ऐसे चर्चा करी थी जो उनके खेती किसानी के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती है। तो मई के अंतिम सप्ताह है माही अपने आसपास खरीफ फसलन की मैंने तैयारी शुरू कर दिए थे, खेत की गहरी जुताई कई के मैंने पाटा लगाई के हमाटी का घाम माही खासा चंचना घाम सुखा दे थे, तो जब गिरबा फतिरबा अंजार तमाम जितना भर पूरा ही परे रहा थे जो कि नुकसान कह देते थे, जो कुछ खरपतवारों के बीच जो पड़े रहते थे जो नुकसान करे के मर जाते तो कहनो को एक सफाई खेत अंदर हो जाए, कल रात रेव में साथ है मिट्टी का
11: थोड़ा एसिड किया
3: तो कहावे बहन की
11: रशियन इजरायली म्यूजिक 4 बजे
3: बरसा रहा है हरहरी जो मक्का है सोयाबीन है
11: बच से रहे
3: लगा थे कुछ जगह तो अपनी यहाँ कम मात्रा में होती लेकिन अपने शेड्यूल के कुछ ऐसा आसपास
9: पता चलेगा तो वो कुछ बहुत नाराज होंगे
3: माही करके अच्छा। हमारा कुछ किसान भाई है करा था
11: क्या पता चला
3: देखिए इतनी जो ना खेत के तैयारी तो मैंने कहीं ले चाहिए खेत के साफ सफाई व्यवस्था बना ले है ना गहरी जुताई से जो कीटन के अंडा है नष्ट हो जाते मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती खेतन के मेड़बंदी के काम पूर कर ले बीज उपचार के नेता मैंने जो ऐसा तत्वावत है उनका सबका इकट्ठा करके संरक्षित कर ली साथ है जैसे धान हो गया टमाटर बैगन मिर्चा के नर्सरी तैयार करके यह बहुत सही समय बतावा था बीज हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र से प्रमाणित स्रोतन से नहीं तब अगर जो उत्पादन है वह बहुत बढ़िया हो गया साथ है उद्यान की फसल यदि आमा अमरूद नींबू बगीचा लगावा चाहिए थे अब इन्हें से गड्ढा खोद के उनका धूप वहीं छाड़ दी तो मैं धूप

0: संभावना होती तो बढ़िया हो जाती। खाद प्रबंधन की तैयारी कर ली, खेत की तैयारी के समय अच्छी सड़ी खोर खाद या वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल है कई दी खेतन में छिड़काव कई दी। साथ है देखिए बहुत ऐसे जन वही है जब उनके मई के महीना वही जब कई
1: बोली
0: तो मई के महीने में मुख्य रूप से गर्मी बरसात के मौसम में जब चलाई वाली सब्जी है चाहे वो बहन लौकी करेला तरोई खीरा बैगन के बुवाई में नहीं पहले थे। एक ही अलावा किसान की जो नकदी फसल है ना तो इन सब के व्यवस्था में नहीं करत है और इनका जो पानी है इधर पानी निकासी के जो व्यवस्था है ये सबको बना लेते हैं। तय में से पांच कही थे कि कई फसलन के रिंठे सामंजस्य बनावट है।
2: मेरा देवर है कंप्लीट एडिक्ट, शेखर को कुछ भी बोलो तो कहता है ही इज अ चाइल्ड।
3: मुझे उसका नंबर और एड्रेस चाहिए।

0: Excuse me, sir, your wallet.
1: हर समय में
0: आप पहले भी आ चुके हैं लेकिन साहब अगर आप फिर से आएंगे ना तो मैं पुलिस को सलाम साहब
2: दो महीने पहले किडनैपिंग हुई थी
0: नहीं साहब इसके बारे में कुछ पता नहीं है
2: इन कैमरास की फुटेज चेक करनी है
1: चाहे जब ने जो के बात हुई कोनो घटना हुई वो घटना में कहानी में कौन कौन गायब
2: सेवन फाइव की फुटेज दिखा

0: की फुटेज मिसिंग है।
1: पता नहीं सर ये कैसे गायब हो गए।
0: और जिन 3 घंटे में किडनैपिंग हुई थी वही फुटेज गायब है, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: हाँ सर, एक दिन पुलिस आई थी तो बॉस ने लोगों को जल्दी घर भेज दिया था।
2: प्रयास की हिन आपका हरियर बनाने के प्रयास की हिन। देखिए जब पहले से कुछ बना हो तो
0: उसके एक दिन पहले का फुटेज दिखा
2: रहे मां। अब प्रगति करे मां ही कन्या नहीं है, खाली जमीन मां नए तरीके से व्यवस्थित करब, नया निर्माण करब, बड़ा काम करब। प्रदेश 1947 की पहली प्रदेश अपने लुटते पेड़ हैं तमाम विदेशी
1: सर। अब ये सारी वीडियोस तो बॉस के केबिन में होते हैं सर।
0: तो दिखाने का क्या लेगा?
1: वक्त लगेगा सर, लेकिन काम कर दूंगा।
2: तो अब
0: मिलते ही मुझे फौरन फोन करना।
1: जी बिल्कुल सर, जरूर।
3: ये चर्सी कौन है?
2: उसने कुछ साथ
3: ये हमारे नए एसीपी साहब है।
2: मनाई के लाला छीन लिए
3: ये तो इतने ऐसा हरकत बना रखा है।
2: क्या हुआ करे कि देश का कहूँ भैरा कस शरीर।
3: गुड मॉर्निंग सर।
2: अंग्रेजी हुकूमत श्रमिक छोड़
4: मॉर्निंग
3: वेलकम टू गोवा
2: रखा है और जिम्मेदारी और बड़ी कुर्सी वाली
3: कूते
2: हां का खातिर अपने
4: कूते अधिकारी को लंबा करना पड़ेगा। ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं
3: काले
2: लोगन खूब काम
4: और काले जी मां-बाप ने नाम बड़ा सोच समझ के रखा है ना।
3: राणे
4: यस यस
3: सर, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट पॉस्को
2: जबरा जैसा चाहे पैसा
4: पॉस्को।
5: यस सर।
4: तेरा पेट भी निकला हुआ इतना।
5: सॉरी सर।
4: तू ऐसा कर कि कल से ना सुबह 10 किलोमीटर मेरे साथ वॉक करना, ठीक है?
2: ये है यह ट्रैफिक के खिलाफ।
4: ठीक है सर। बॉस्को महापुरुष ये डिपार्टमेंट में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं?
2: कहिए कैसे?
5: कुछ नहीं सर।
2: पौरुष जागे
3: कुछ नहीं बोलते।
2: महात्मा
5: कुछ नहीं बोलते।
4: कुछ तो बोलते हैं यार, बता ना, बता ना।
5: सर क्या है ना कि सब कहते हैं आप थोड़ा अटके हैं।
4: हटेरा बोलते हैं
2: जिनका
5: नहीं सर
2: देश के नवनिर्माण में।
4: हटेरा बोलते हैं मेरे को?
5: नहीं सर।
4: कौन बोलता है? तू बोलता है?
5: सॉरी सर।
2: के बाद
4: तू बोलता है? ये लोग बोलते हैं?
5: नहीं सर।
4: कौन बोलता है?
5: कोई नहीं सर। सॉरी
4: का
5: एक बड़ी जिम्मेदारी
4: चलाने की। अरे बॉस को तो रो क्यों रहा है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। चल तू जाके
6: आपको डीआईजी साहब ने बुलाया है।
2: तू एक प्रकार
4: सीनियर लोग बिना हमेशा पकाते रहते हैं।
2: स्वतंत्रता संग्राम
6: कमेंट कमेंट कमेंट लोहा सिंह धुल उर्फ
2: देश के
6: एलएसडी
2: की बात तमाम
6: वेलकम टू गोवा
2: के देश के
6: पंजाब पुलिस से आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी खबर आ रही है।
2: भारत के
6: बैठे बैठे
2: लिखे के काम आओ ऐसा ने हमारे जो लाल रहे नेहरू जी करेजा का
6: भाई नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
2: विपरीत परिस्थिति में ही
6: भाई सहूलियत क्या राज है
4: वो सर क्या कहते हैं ना क्या अपना व्हेन इन रोम बी लाइक द रोमन्स। तो इसलिए चर्चियों के साथ रह रहे के थोड़ा चर्ची लगने लगा और कभी कभी सर
2: खेती नहीं रही है ना
4: एक आधा मार लगा और
2: नई व्यवस्था बनाए के। और
6: देखिए लेजी साहब
2: हर
6: व्यवस्था आपका काम बहुत सही है
2: जब ढड़ की नहीं
6: लेकिन तरीका बहुत
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू
4: मेरा तरीका तो मेरी पहचान है सर।
2: आराम हराम
4: इसे तो जिंदा रहने दीजिए।
2: यह नारा देश के लोगों
6: एलएसटी कल के ऑपरेशन में 3 लोग मारे।
2: राष्ट्र निर्माण
4: लोग मरेंगे नहीं तो सर आपके 65 काउंटर्स का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा?
2: पूर्ण स्वराज के इतिहास
4: 55 तो सिर्फ ऑफिशियल थे। हमको
6: पाचन का चोरों के साथ साथ पुलिस की भी जासूसी कर रहे
2: हैं। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई
6: देखो एलएसटी
2: 1964 तक
6: जब तक काम के हो
2: स्वतंत्र भारत
6: के
2: प्रधानमंत्री रहे।
6: लगभग बस ख्याल रहे कि हमारे इमेज हमारे होली की तरह नहीं हो जाए। अगर मुझसे कुछ सीखना है तो बस इतना सीखिएगा कि नाम इतना साफ है कि 10 अनऑफिशियल एनकाउंटर भी माफ हो जाए।
2: उनके कार्यकाल में भारत
6: रिकॉर्ड भी टूटेगा,
2: तकनीकी
6: और इज्जत भी बनेगी।
2: पंचवर्षीय
4: योजना है। क्या बात कही है सर, इसके ऊपर तो सर एक सेल्फी हो जाए यादगार बनाने के लिए।
2: देश का लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक आधार
4: थोड़ा
2: ऐसे के भारी उद्योग पंचवर्षीय योजना
4: खुद की राष्ट्रीय
2: स्तर में गुट निरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका मैंने बताई जाती है। ऐसा
6: कायदे में
2: रहा था कि
6: लोग फायदे में संविधान
4: आप चिंता मत करो सर, जैसे उड़ते पंजाब को जमीन पे ले आया शिक्षा के जो वैसे डूबते हुए गोवा को भी किनारे पे पहुंचा
2: दिया। उनके कार्यकाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संगठन डीआरडीओ जैसे संस्थान ऐसा देश के जो है

0: हाँ वो एड्रेस पूछ रहे मेरे से।
1: एड्रेस बताने का कोई इतना पैसा देता है क्या?
0: अरे भाई अब होएगा कोई अमीर आदमी, अमीर टूरिस्ट होएगा ना, या मेरे को
1: सनी को जानता है ना?
2: हम बच्चे अपन
0: एक बार ये गोवा है, मैं भी थोड़ा बहुत ड्रग्स के मामले में इधर उधर हाथ घुमा लेता हूँ, और बात मेरे तक आती ना तो ये भी है मेरा।
2: जय जवान जय किसान।
0: बहुत सीधा आदमी है, काहे को पड़ रहा है इन चक्कर।

0: дураки! Мы все понимаем!
1: Теперь ты сбенье, зачем мне вас обманывать?
2: Слушай, сука, сюда! Next time you will be die! Let's go!
1: It's my responsibility! Я чайе, я тереку! Я чайе! Кай ку кар рае саб!
3: Из бачи ку дунь рау мэн. Дво мэнэ пэли киднап хуи. Ту жанта иске баре мэ кахи дэкха эсэ.
1: Я дэх ра тереку идар? Плэс кун хула мэ? Киндергарден хул ракха кя мэнэ? Иску пи чанта э? Нэй ба чанта мэ? Арэ бхай, мат кар ие саб. Фас жаэнга. Мат кар. Фикар хори мэреко тери.
3: Фикар хори мэри. उस्मान के यहाँ चार दिन हुआ होगा तो मुझे जानता है। उस बच्ची की माँ को सालों से जानता हूँ। सोच मुझे कितनी फिक्र हो रही होगी उनकी।
4: शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है, ये तीन जो है जो अडॉप्शन है उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
5: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
6: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बेयर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
5: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है, तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
4: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है और जो राइटफुल बेनिफिशियरीज हैं वो वीड आउट हो जाएगा, उनको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे, पैटर्न को वो डिटेक्ट करना और पोस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर ये खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता है तो उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
5: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत, तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
6: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को QR कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका GPS टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यह टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
5: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
4: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा एआई असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल एआई ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्ट रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो एनएलपी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करे, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज का। हाँ, उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
5: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर जो भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं, तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
4: देखिए, चैलेंजेस ज्यादातर जो है, रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और इसके वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अभी जीपीएस टैग्ड व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा
5: जी,
4: यहां से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, या पता, यू कैन मॉनिटर जीपीएस टैग व्हीकल्स कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे होगा, एआई एल्गोरिथम्स जो एआई यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिमांड भी फोकस्ट कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफ टेक है राशन में। कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में, क्योंकि उनका टाइम स्पैन होता है एक महीने में, राशन कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हैं या आखिरी में भी उठा सकते, कई बार त्योहार के टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते, कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उसके वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता, तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर क्यूआर कोडेड की वजह से वो टैंपर कोई कर ही नहीं सकते, जो जिस फेयर प्राइस शॉप को जो राशन शॉप के लिए जाना है वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला क्यूआर कोडेड कौन से राशन की दुकान में पहुंचा है और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ना, वेयरहाउस से लेके राशन शॉप की दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
5: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना एनएफएसए के तहत लगभग 81.35 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
6: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस को प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए, एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो और कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स कार्बन

0: Emissions will reduce 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट।
1: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ई पीओएस मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक पीडीएस की बात की गई। और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक पीडीएस ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
2: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आप राशन उतारना चाहिए, उतारने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। इस तरह का प्रोविजन अभी है, विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं।
1: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
2: इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते हैं सोच समझ के करते हैं। और जहां तक मैंने पीडीएस इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है
1: जी,
2: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके और इवन वेयर हाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए और बेनिफिशरीज को टाइम से उनका राशन मिलेगा और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा। कि ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
1: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
2: देखिए, इसमें तो डीलर्स का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करे। एंड दूसरा, जो स्टेट कॉस्ट इनकर था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन अ मच बेटर वे।
1: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। संगम फिल्म से ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

मिल गया।

0: तेरा मिल गया, हम बुढ़ा मिल गया, हर बैठा करू राम मुझे बुढ़ा मिल गया, बैठा करू राम मुझे बुढ़ा मिल गया।
1: और अब अगली आवाज सुनिए किशोर कुमार की याराना फिल्म से, जिसे इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत सुनिए सदमा फिल्म से सुरेश वाडकर की आवाज है, गुलजार के लिखे हुए बोल, जिन्हें संगीत में पिरोया है इलैया राजा ने।

आशा भोसले की ये खूबसूरत आवाज में अगला गीत सुनिए, जॉनी मेरा नाम फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और संगीत ने सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अगला गीत सुनिए, कुर्बानी फिल्म से कंचन, मनहार और आनंद की आवाज है। इंदिवर के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रैली और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
4: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सीनियर स्कीम के टेलीलॉन ऐप बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: विकसित भारत की तैयारी।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से उसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। FCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भागीदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जेन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रही। द न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation

0: प्रोग्रेस।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: Defence Minister Rajnath Singh today chaired the sixth meeting of the informal group of ministers in New Delhi to review the availability of essential commodities and the resilience of our supply chains amid the West Asia situation. In a social media post, the minister called upon citizens to avoid panic purchase of petrol, diesel and LPG as the government is pulling out all stops to ensure the availability of all essential items. In Kerala, five people were arrested after alleged attacks on Enforcement Directorate ED officials during protests by workers of the Communist Party of India Marxist in Thiruvananthapuram. The ED today conducted raids at multiple locations, including the residences linked to former Chief Minister Pinarayi Vijayan at Thiruvananthapuram and Kannur. The officials were attacked in Thiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches, and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
2: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवीर फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से।

0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस सम्त में पीडीएस को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इकदाम पीडीएस के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज पीडीएस में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक पीडीएस को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निजाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उसमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े एआई पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक एआई की कयादत वाली रियल टाइम पीडीएस मुस्तफिदीन का निजाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम एआई पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा पीडीएस स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो

0: परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुंबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की सातवीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए शुमाल मशरिक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहें और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आजाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीकाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी अख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें चार दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं जिनकी वजह से चुनाव

किस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आसाम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरिक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड आसाम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आदमी ने हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्कदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्कदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्कद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बरेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्कद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के आईएसएसएफ आलमी कप में इतलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती

0: अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम भी ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोड बोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 300,000 बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेस की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें, 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। 26-27 साल हो गए हैं वर्तमान सरकार को, इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश

0: अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि

2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि

0: पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए है तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें। सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पर रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़े कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का एक कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो बोर्ड बोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे बोर्ड बोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे तो तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने

0: वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, कितनी जमीन आपको देना पड़ेगा, वो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आप

0: के अगल बगल चंदपुर डिवीजन में मांग रहे हैं। हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहेंगे इतने आदमियों को रहने के लिए कितने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, कितनी जमीन आपको देना पड़ेगा, वो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आप

0: सकती कर सकती है।
1: प्रफुल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्प्लीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है नाटक उपेक्षित, जिसके लेखक हैं घनश्याम सिंह तोमर और प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र स्वरूप राजन।
1: प्रस्तुत है वृद्ध जनों की रहन सहन की समस्या पर केंद्रित नाटक उपेक्षित, लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन।

0: महेश, जरा देखो तू कौन साहब है।
1: जी मालिक।
2: क्या प्रसाद साहब हैं?
1: जी हाँ, अंदर हैं।
2: उनसे बोलो जोशी जी आए हैं।
1: मालिक, कौन जोशी जी आए हैं?
0: अभी उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दो, मैं अभी आता हूँ।
1: जी आप बैठिए, मालिक अभी आते हैं।
0: नमस्कार जोशी जी।
2: नमस्कार नमस्कार। अरे प्रसाद जी, आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं, ये क्या हालत बना ली है आपने?
0: शारदा के जाने के बाद अब किसी भी काम में मन नहीं लगता।
2: ओह,
0: ना तो कोई बात अच्छी लगती है, ना ही कुछ करने का मन होता है।
2: सही,
0: सच पूछिए तो अब

0: जीवन में इतनी रिक्तता आ गई है कि जीने का मन ही नहीं करता। शारदा के देहांत के बाद बच्चे और बहुएं आई थी।
1: अच्छा,
0: कुछ दिन उनके रहने से मन बहला रहा।
1: हाँ,
0: अब सब चले गए तो घर काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है।
1: शाहबाद कहते हैं प्रसाद जी, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो आश्चर्य होता है। मेरे विचार में पहले तो आप कुछ दिन अपने बच्चों के यहाँ हो आइए। 3 बच्चे हैं आपके, बहू और बेटों में आपका मन बहल जाएगा, पोते पोतियों की देखभाल करने में समय गुजरेगा। प्रसाद जी, बच्चे कहाँ कहाँ हैं आपके?
0: शैलेंद्र जो है वो खंडवा में है।
1: अच्छा,
0: दूसरा पटना में और तीसरा धर्मेंद्र जबलपुर में।
1: बिल्कुल,
0: प्रोफेसर है।
1: हाँ, तो अब आप अपना कार्यक्रम बना लीजिए और उस पर अमल कर डालिए।
0: ऐसा ही करूंगा, करना ही पड़ेगा, घर छोड़ने का मन बनाना ही पड़ेगा। इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, उन्हें भुलाना ही पड़ेगा।
1: देखिए प्रसाद जी, भावुकता एक सीमा तक तो ठीक होती है, किंतु उस सीमा के बाद तो वो एक अभिशाप बन जाती है, जिसके नतीजे में आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है, वही कष्ट जो आप अब उठा रहे हैं।
0: आपका कहना कुछ हद ठीक है, लेकिन स्वभाव और प्रवृत्ति को बदलना आसान नहीं होता। अच्छा बताइए, ठंडा लेंगे या गरम? बातों में ये सब भूल ही गया था।
1: प्रसाद जी
0: क्षमा करना,
1: अतिथि से पूछा नहीं जाता, जो अच्छा हो मंगवा लीजिए। मैं भी कारी से चला आ रहा हूँ, सोचा रास्ते में आपसे मिलता चलूं, बहुत दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई थी।
0: अच्छा हुआ आप आ गए, आप जैसे मित्रों के मिलने से बड़ा बल मिलता है।
2: मालिक ये लीजिए।
0: हाँ, रखो रखो,
2: यहाँ रख दें।
0: हाँ लीजिए, जलपान कीजिए।
1: ये नाश्ता शायद महेश ने बनाया है।
0: अब तो महेश ही ये सब घर संभाल रहा है।
1: ये आपके यहाँ कब से काम कर रहा है?
0: यही कोई 2-3 महीने से।
1: क्या इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है?
0: क्या मतलब?
1: यही कि आप जानते हैं ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका और कौन कौन है, पहले क्या करता था, अगर पहले कहीं और काम करता था तो काम छोड़ने की वजह क्या है।
0: क्या ये सब जानने की जरूरत है? क्या
1: है? जरूरत है, इस घर में आप अकेले रहते हैं, ऐसे में कोई भी कुछ कर सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए।
0: सावधान रहने के लिए अब रही क्या?
1: हा, फिर वही बात निराशा की। प्रसाद जी, मैं मानता हूं आपको भाभी के देहांत से बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, परंतु
0: परंतु कुछ नहीं जोशी जी, अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, अपने पोते पोतियों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। आप जैसे बुद्धिजीवी यदि जीवन के अंधेरे पहलू को लेकर मौन साध लें, निष्क्रिय हो जाएं, तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी किसके अनुभवों और मार्गदर्शन का सहारा लेगी, बताइए? ईश्वर ने हमें मनुष्य यौनी इसलिए तो नहीं दी कि हम उसे व्यर्थ गंवा दें? निराशा छोड़िए, विवेक को जगाइए, कुछ कीजिए जिससे मानवता और देश का भला हो। आपसे बहुत सी आशाएं हैं।
0: क्या ये जरूरी है कि महेश के बारे में मालूमत की जाए?
1: जी हाँ, यह आवश्यक है, सरकार ने भी इस बारे में सजग रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। किसी को भी नौकर रखने पर उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। मुझे उसका पता दीजिए। मेरे एक मित्र मिस्टर पेंगे पुलिस अधिकारी हैं, वो इसके बारे में पूरी मालूमात करवा लेंगे।
0: अगर ये इतना जरूरी है तो पता मैं दिए देता हूं। ये लीजिए।
1: लाइए। धन्यवाद। अच्छा, अब जाने की इजाजत दीजिए।
0: अच्छी बात है। फिर कब आ रहे
1: हैं? जल्दी आऊंगा। इस बीच आप अपने बच्चों के पास जाने का प्रोग्राम बना लें और मुझे बताएं।
0: बना लूंगा और आपको सूचना भी दे दूंगा।
1: आप मुझे फोन पर बता दें, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो प्रसाद जी। हाँ हाँ मैं जोशी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार, कुछ प्रोग्राम बनाया आपने जी? हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो शाम को तो आप घर ही पर भी रहेंगे ना? जी हाँ, मैं आ जाऊंगा। मैंने भी अपने जाने का प्रोग्राम बना लिया है, कुछ दिन मैं भी अपने बच्चों के साथ जाकर रहूंगा। अच्छा बाय।
1: जोशी जी आ जाइए, दरवाजा खुला है।
0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए।
0: तो आपने बच्चों के पास जाने का मन बना लिया?
1: जी हाँ, अब आपकी सलाह पर कुछ न कुछ तो करना ही था। लेकिन एक बात की चिंता है।
0: क्या?
1: इतना बड़ा घर सुना छोड़कर कैसे चला जाऊं?
0: अरे महेश के भरोसे, मैंने उसके बारे में पूरा पता लगा लिया है। वो मंदसौर का रहने वाला है, ईमानदार और सीधा सच्चा आदमी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो और उसका परिवार वहां सिलेट कारखाने में काम करते थे। उसके बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद वो मंदसौर से यहां चला आया। पहले एक होटल में काम करता था, लेकिन होटल का वातावरण उसे रास नहीं आया, इसलिए उसने होटल का काम छोड़ दिया। आपने उसको नौकर रख लिया, अब यही काम कर रहा है।
1: ठीक है, अब ये जिम्मेदारी सौंप कर एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
0: वैसे जोखिम की चीजें आप बैंक के लाकर में रख दें, घर में कमरे में लॉक लगा दें, एक कमरा उसके लिए छोड़ दें। मैं समझता हूँ महेश आपको धोखा नहीं देगा।
1: ठीक है, मैं दो एक दिन में ही जाने का सोच रहा हूँ।
0: इस यात्रा से आपको कुछ ताजगी मिलेगी और फिर आप हवा भी बदल जाएगी। इस स्थान बदलने से आपका मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा।
1: जोशी जी, जहाँ तक वातावरण का सवाल है, वातावरण तो सब जगह एक सा है। वही तनाव, वही घुटन, वही जिंदगी, पैसे के लिए दौड़ धूप, कुछ और अच्छा पाने की लालसा। आबो हवा जरूर बदल जाएगी, जिसका असर स्वभाव और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
0: जी हाँ, मेरा मतलब वातावरण से जलवायु बदलने का ही था। आपने शब्द पकड़ लिया और अपने बौद्धिक होने का सबूत दे ही दिया। इन दिनों कुछ लिखा हो तो सुनाइए।
1: लिखा तो है, अब खाली समय में यही काम रह गया है। शारदा थी तो उनसे बातचीत में समय कट जाता था। अब तो केवल पढ़ना और लिखना ही रह गया है। जो कुछ लिखा है उसे फिर आप निराशावादी लेखन कहने लगेंगे।
0: फिर भी सुनाइए। तो
1: लिखा तो बहुत कुछ है, पर सुनाने का मन नहीं होता, इसलिए कि मैं

0: दुखी हूँ, दूसरों को उसे सुनाकर दुखी क्यों करूं।
1: फिर वही बात प्रसाद जी, आप सुनाइए, यदि मनुष्य को दुख का अनुभव नहीं हो तो सुख के स्वरूप की न तो कल्पना कर सकता है और न उसे भोग सकता है। कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही हमें सहज और सरल स्थिति में जो खुशी आनंद मिलता है उसका उपयोग हम ज्यादा मजा लेकर करते हैं। आपने जो भी लिखा है सुनाइए, वो जरूर सार्थक होगा।
0: अब आपका आग्रह है तो कुछ सुनाई देता हूं।
1: हाँ जरूर
0: सुनिए
1: जी।
0: याद दुख की तो दुख देती है।
1: याद दुख की तो दुख देती है, वाह।
0: याद दुख की तो दुख देती है।
1: हाँ हाँ।
0: याद सुख की भी दुख देती है। हाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह।
0: कितनी अच्छी ये बात हो जाती।
1: हाँ।
0: काश के याददाश्त खो जाती।
1: वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आपने अपनी बात बड़े ढंग से कही है, हालांकि आपकी निजी अनुभूति है, किंतु इसमें एक दर्शन भी है, एक वास्तविकता है, हकीकत जिसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ कुछ और सुनाइए
0: जोशी जी।
1: जी
0: कुछ पंक्तियां और हैं। जिंदगी एक हसी परिंदा है।
1: हाँ जिंदगी एक हसी परिंदा है, वाह।
0: जिंदगी
1: एक हसी परिंदा है।
0: एक हसी परिंदा है। समय की शाख पर नजाकत से
1: हाँ
0: रुक के कुछ देर चहचहाता है।
1: क्या बात,
0: झूलती शाख छोड़।
1: क्या वाह वाह वाह वाह वाह वाह, जिंदगी और उसके बाद उसके वजूद के आभास की इससे और अच्छी तस्वीर शब्दों में नहीं पेश की जा सकती। तो प्रसाद जी मान गए, आपके कलम में बहुत जोर है, बड़ी ताकत है।
0: जोशी जी मैं अगर गलत नहीं सोचता तो हमारे बाद हमारे निशान ही हमारी पहचान बताते।
1: बेशक बेशक प्रसाद जी, तो आप कल जा रहे हैं?
0: हाँ, मैंने अपने पहुंचने का तार भी दे दिया है।
1: जाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: आपकी यात्रा भी शुभ हो, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हाँ बच्चों, अब जरा फिर से करके दिखाओ। अरे आप इतनी जल्दी, क्या ऑफिस से छुट्टी हो गई?
1: अरे नहीं मालती, मुझे जल्दी आना पड़ा।
0: सब कुशल तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है?
1: हाँ तबीयत भी ठीक है।
0: ओहो, तो फिर क्या बात है?
1: अरे पहले अपना डांस क्लास बंद करो, फिर बतलाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों आप लोग आज जाइए, हाँ कल जल्दी आ जाना। हाँ आप बताइए क्या बात है?
1: वो बाबूजी का तार आया है।
0: सब ठीक तो है? अरे अभी तो मम्मी का आघात ही नहीं भूले हैं हम लोग।
1: शुभ शुभ बोलो मालती, बाबूजी अभी आ रहे हैं, मैंने सोचा तुमको पहले बता दूं और उसके बाद उनको लेने स्टेशन चला जाऊं।
0: ओहो, फिर मेरी डांस क्लास का क्या होगा? और फिर उनके ठहराने के लिए?
1: अरे बच्चों वाले कमरे में ठहरा देंगे।
0: और फिर बच्चे?
1: वो कुछ दिन जब तक बाबूजी रहेंगे अपने कमरे में रह लेंगे।
0: ओहो, उनकी पढ़ाई का क्या होगा?
1: ओहो, वो भी अपने कमरे में उन्हें करना पड़ेगी। ऐसा करो, डांस क्लास की कुछ दिन छुट्टी कर दो और बच्चों का सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दो।
0: आप भी कमाल करते हैं। अरे डांस क्लास बंद कर देने से उतने दिन के पैसे नहीं काट लेंगे वो लोग?
1: अब क्या किया जा सकता है, यही करना पड़ेगा।
0: ओहो, अब देखो बच्चों को भी कितनी तकलीफ हो जाएगी ना।
1: भाई वो तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी।
0: लेकिन अब ये कब तक?
1: ओहो, वो दो चार दिन रहकर चले जाएंगे, तब तक तो हम ये सब कर सकते हैं ना। जल्दी करो, वक्त इन सब बातों का नहीं है, गाड़ी का समय हो रहा है, मुझे स्टेशन जाना है।
0: ये बाबा आ रहे हैं,
2: बाबा आ रहे हैं। ये
0: वो हमें कितना प्यार करते हैं ना, वे हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए भी ला कर देते हैं। याद है जब हम भोपाल गए थे? हाँ याद है, जब बेचारी दादी नहीं रही।
3: अरे चुप रहो तुम लोग, तुम्हें कुछ मालूम भी है उनके आने से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो जाएगी?
0: क्यों मम्मी?
3: क्योंकि बाबूजी जो है ना, वो तुम्हारे कमरे में रहेंगे और तुम दोनों को हम लोगों के कमरे में आना पड़ेगा, वहीं पढ़ना और वहीं सोना, समझे?
1: अरे यार ये सब बातें बंद करो और कमरा ठीक कर दो, मैं स्टेशन जाता हूँ।
3: ठीक है।
4: अरे मेरी हनी, आशु कहाँ हो?
0: ओहो, लगता है बाबूजी आ ही गए।
1: बाबूजी, मैं भी स्टेशन आ ही रहा था, तार अभी अभी मिला है।
4: हाँ बेटे, तार चलने के पहले ही दे दिया था।
0: बाबा आप आ गए, हम आप ही का रास्ता देख रहे थे।
4: अच्छा, और क्या सोच रहे थे?
0: और बाबा, और हम सोच रहे थे कि आप हमारे लिए जरूर कुछ लाएंगे।
3: और बाबा मेरे लिए भी। अरे अब बाबा को बैठने तो दो, जरा चैन तो लेने दो, हटो तुम दोनों, जरा बाबूजी के चरण स्पर्श तो कर लूं।
4: सौभाग्यवती रहो, खूब फलो फूलो।
3: बाबूजी अब आप हाथ मुंह धो लीजिए।
4: हाँ बेटी, बाथरूम में पानी तो होगा?
3: हाँ बाबूजी, हाथ मुंह धोने लायक तो मिल ही जाएगा, आज जरा नल जल्दी चले गए थे ना, इसलिए पानी की कुछ कमी है। और वैसे भी यहाँ तो अक्सर नल थोड़े से समय के लिए आते हैं, इसलिए पानी की कमी तो बनी ही रहती है बाबूजी। इस शहर में तो बस कभी पानी की कमी, तो कभी बिजली नदारत, तो कभी गैस की शॉर्टेज, एक ना एक मुसीबत तो झेलनी ही पड़ती है। और कभी कभी तो बाबूजी गैस नहीं होने से खाना बाहर से लाकर खाना पड़ता है, बड़ी मुसीबत है यहाँ तो।
4: बेटी, हमें संतोष तब मिलता है जब हम अपने से नीचे के वर्ग को देखें, फिर मन करता है कि ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ऐसी बहुत सी चीजें दी हैं जो औरों को नहीं दी।
3: हाँ बाबूजी, वो तो ठीक है, मगर अब ये सब कुछ कहने में तो आ ही जाता है ना।
1: अरे क्या घर का दुखड़ा लेकर बैठ गई, चाय नाश्ता लाओ। लीजिए बाबूजी ये तौलिया, हाथ में पहुंच लीजिए।
4: आओ बच्चों, आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो।
5: नहीं बाबा, हमने अभी खाना खाया है।
0: आप नाश्ता करिए।
4: अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है?
1: हाँ पढ़ाई तो ठीक है बाबूजी, लेकिन फीस और बस्ते का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।
4: न जाने कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है पढ़ाने का, हमारे जमाने में तो कम सब्जेक्ट होते थे और आधा काम जो है वो जबानी होता था। गिनती पहाड़े पौने सवैया अधे सब जबानी और हिसाब फटाफट।
1: बाबूजी अब तो किताबें कॉपियां यूनिफॉर्म और हर दिन के चंदे और फीस इतना बोझ हो गया है कि उठाना मुश्किल पड़ रहा है। इसकी वजह से घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो गया है बाबूजी।
4: बहू तुमको भी कुछ करना चाहिए। आजकल एक की कमाई में घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है।
3: अब और क्या करूं बाबूजी मैं, बस थोड़ा बहुत डांस क्लासेस चला लेती हूं, 100-200 रुपए वो मिल ही जाते हैं। अब घर के कामों में ही इतनी उलझी रहती हूँ कि कुछ दूसरा करने की फुर्सत ही नहीं मिलती।
4: तुम बेटी कोई क्राफ्ट क्लास ज्वाइन कर लो और फिर सीख करके उससे थोड़ा सा लाभ उठा लो।
3: अब उसके लिए भी तो फीस देनी पड़ेगी ना बाबूजी, वो कहाँ से आएगी?
4: अरे भाई जब तक तुम प्रशिक्षण लोगी तुम्हें फीस के लिए पैसे हम बेचते रहेंगे।
3: अच्छा।
1: छोड़िए बाबूजी, आप यहाँ आए हैं आराम करने के लिए और गले लगा रहे हैं झंझटें।
3: अच्छा तो आपको ये झंझट लग रही है? अरे बाबूजी अपनी मर्जी से कुछ देने की बात कर रहे हैं तो आप बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं जी?
4: ठीक है भाई, तुम लोग विवाद क्यों करते हो, मैं अपनी पेंशन से तुम्हें कुछ भेज दिया करूंगा।
1: अरे चलिए बाबूजी आराम कर लीजिए, सफर में थक गए होंगे।
4: मैं यही पलंग पर लेट जाता हूँ।
2: मैं ऑफिस जा रहा हूँ आंटी, तुम बाजार से सब्जी ले आना।
3: अरे आप रुकिए जरा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे मार्केट में छोड़ देना, आप सब्जी ले लूंगी वहीं से।
4: हनी बेटे
5: जी,
4: एक गिलास पानी पिलाओगे?
5: बाबा मैं आपके लिए क्या लाऊं?
4: अरे भाई तुम खुद आ जाओ, हम दोनों बातें करेंगे।
5: जी लीजिए बाबा पानी।

0: बुआ इतना बुरा क्यों बना रहे हो?
1: बाबा, 3 महीने तक जींस सिलने के लिए भी नहीं डाली जाएगी।
0: क्यों?
1: मम्मी पापा के पास उसके लिए पैसे कहाँ निकलेंगे?
0: क्यों नहीं निकलेंगे?
1: मम्मी पापा कहते हैं कि उनके सब पैसे खर्च हो जाते हैं।
0: किस बात में?
1: अब देखिए ना, हम दोनों की फीस, घर के सामान का खरीदना, क्लब की फीस, ब्यूटी पार्लर का खर्चा, और भी खर्चे हैं बाबा। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं?
0: अच्छा भाई, हम दर्जी के यहाँ चलकर तुम्हारी जींस सिलवा लें।
1: जी।
0: और हमारी आशू बेटी को क्या चाहिए?
2: बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके पैसे खर्च करवाना नहीं चाहती।
0: अच्छा, तो तुम इतनी समझदार कब से हो गई?
2: बाबा, मम्मी कहती हैं पैसे जोड़ जोड़ कर रखने चाहिए, वक्त जरूरत पर काम आते हैं।
0: वो ठीक कहती हैं।
1: बाबा, अब हमें मम्मी पापा के कमरे में रहना पड़ेगा, वहीं पढ़ना पड़ेगा, वहीं सोना पड़ेगा।
0: क्यों?
1: आप आए हैं ना, आपको हमारे कमरे में ठहराएंगे। मम्मी कह रही थी जब 2-4 दिन बाद आप चले जाएंगे तो फिर हम अपने कमरे में रहने लगेंगे।
0: 2-4 दिनों में नहीं बेटे, हम कल ही चले जाएंगे। मैं तुम लोगों को तकलीफ देने नहीं आया हूँ बेटे। अच्छा, अब थोड़ी देर आराम।
3: बाबूजी, सो गए क्या?
0: अरे बेटी, इतनी जल्दी आ गई थी। और हाँ, कल मुझे जबलपुर जाना है। ये पैसे लो, मेरे लिए रिजर्वेशन करा दो।
4: क्या बात है बाबूजी, अभी आए हैं और अभी जाने की बात करने लगे।
0: अरे भाई, तुम लोगों को देखने का मन था, देख लिया। बच्चों और बहू से मिल लिया। अब थोड़ा सा धर्मेंद्र के पास भी हुआ, उसे भी देख लूं।

0: बेटा धर्मेंद्र।
1: अरे अरे बाबूजी आप, बाबूजी आप, अरे आने की सूचना तो दे दी होती, मैं स्टेशन पर आ जाता। मकान ढूंढने की परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती आपको?
0: अरे नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। बहू कहाँ है?
1: जी बहू जी, वो डॉक्टर के यहाँ गई है।
0: डॉक्टर के यहाँ?
1: जी वो बाबू जी, वो प्रेग्नेंट है ना।
0: धर्मेंद्र जी, तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हारे दो दो बच्चियां हैं
1: जी,
0: फिर भी ये सब क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है?
1: है ना बाबू जी, लेकिन वो क्या बाबू जी, आपकी बहू को एक लड़के की चाह है।
0: क्या पागलपन है। लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। तुम अपनी सास को बुला।
1: जी
0: उसको बुला लो।
1: हाँ।
0: वो यहाँ आकर के तुम लोगों की और बहू की देखभाल करेगी।
1: जी जी।
0: हाँ एक बात और।
1: जी बोलिए बाबू जी।
0: कल मेरा वापस जाने का रिजर्वेशन भी करा दो।
1: जी इतनी जल्दी बाबू जी?
0: तुम लोगों की तकलीफों में एक और तकलीफ बढ़ाना मैं नहीं चाहता।

0: अरे मालिक प्रणाम, आप बहुत जल्दी आ गए।
1: हाँ महेश, ऑटो से सामान तो उतार ला।
0: जी मालिक। अरे भाई प्रसाद जी, इतनी जल्दी आ गए।
1: हाँ भाई, मगर आप भी तो यहीं दिख रहे हैं, क्या बच्चों के पास नहीं गए?
0: गया था।

0: परंतु मैं उनके यहां फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए तीसरे ही दिन चल दिया। और आप?
1: मैं दूसरे ही दिन।
0: क्या हम बूढ़े यूं ही उपेक्षित रहेंगे?
1: लगता है अब यही नियति हो गई है।
0: जब तक सांसें हैं तन्हाई झेलनी है।
1: सच में जोशी जी, मन बना लो।
0: हाँ,
1: क्योंकि बहुत दिनों तक रहना होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक उपेक्षित। लेखक थे घनश्याम सिंह तोमर। भाग लेने वाले कलाकार थे के बी सोनी, मकबूल हसन, प्रेम प्रकाश अष्ठाना, राकेश जैमिनी, बद्रुन्निसा, पूनम भार्गव, प्रेरणा थॉमस और अशोक बुलानी। प्रस्तुति सहयोग आनंद सिंह उद्दे का था और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप घनश्याम सिंह तोमर द्वारा लिखित नाटक उपेक्षित सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आनंद लीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा गिटार वादन का। राग है रागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनैतिक पराजय के बाद अब

0: यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरा पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।